बॉस आस्तर बॉस मरते पैके सर्वट टोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुन दान हो में बो रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने म करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तपी सर थी वै अगन माहे होमत पुराण कनक असव हैवर भूम दान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर सिर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छूटे गर्भ गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को वो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तो वह बोधे अनीत शुद्ध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच बहुत स्यानप जमका पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै एक अनेक अगन नहीं बुझे कोट पाव दरगे नहीं सीजे छूट सनाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मागे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सू गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट जीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन समदिष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को तन तेरो नाओ निथावे को नौ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान।

0: धन गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नु ठारन जो आए सी, वेख्या संसार ते बड़े जुलम कह रहे हन। जे सकता सकते को मारे ता मन रोश न होई, ता कोई रोश नहीं, पर गरीब जनता नु लताड़िया जा रहा सी। लहू दियां नदियां बहाइया जा रही सन। सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन, जनता नु लिताड़ रहे सी। बड़ी दुखी सी जनता, बड़े हंकारी हो गए सन। निरंकार दी लीला है, पाप की जंज लै काबलों दाया। जो के निरंकार दा खेल है, ए बाबर ने भी राज भाग करने सी आके, ते काट इस भी ना कीती हिंदुस्तान ते आके बड़े जुलम ढाए। जिथे सैदपुर दे पठाना नू सजा मिली, उथे फिर गुरु नानक साहब सचे पातशाह बाणी विच दस रहे हन। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। मुगला ने आके चढ़ाई कीती, ते फिर जोर दे नाल आके दुनिया कोलों धन दौलत सब कुछ खो लिया। गरीबां दे लहू बहाए, जिथे शाहूकारां नू लुटिया, उथे संतां साधुआं फकीरां नू भी पकड़ के अपने कैदी बना लिया। ते जगत जलंदे नू थारन लई आए निरंकार दा रूप, कोट ब्रह्मंडा दे मालिक, सुख जो देना सी संसार नू। आप भी इस टोले विच हो विचरे, जो कुछ लुटिया सी ए माल धन चुकन लई लोड़ सी उना नू, ते सारियां दे सिरां ते पंडा रख दितियां, ते अगे ला लिया। धन गुरु नानक पातशाह जी दे सिर ते भी पंड रख दिती, पर इना ने की तकिया के धन गुरु नानक पातशाह एक हाथ विच माला है, दूजे हाथ विच काशा है, ते पंड चार उंगलां सिर तो उपर चल रही है। सिपाहियां ने जाके अपने सरदार नू दस्या, भई एक फकीर ऐसा अजमत वाला है, जिसने हाथ भी नहीं रखिया होया, ते पंड नाल नाल चली आ रही है सिर ते। उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इना ने जिथे लुट दा माल कठा कीता होया सी, नाल ही एक कैद खाना भी बनाया होया सी, जिथे चक्कियां रखिया हुई सन फौजां दे आटा पीन लई। सारियां नूं कणकां दित्तियां गईयां, भई चक्कियां चलाओ भई, ते आटा पीवो। धन गुरु नानक पातशाह जी नूं भी दित्ती गई, ते गुरु नानक सचे पातशाह जिन्हां ने अरदास कीती सी, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तिते लेहो बार। हे निरंकार, तेरी सृष्टि इतना दुख भोग रही है, इतनी कुरला रही है, कृपा कर इन्हां नूं सुख सुखी कर। धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नूं कहण लगे, मरदानिया तैनू चक्की चलाउण दी लोड़ नहीं, तू परमेश्वर दा सिमरन कर। रबाब वजा बाणी आई है, ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता के एती मार पई कुरलाने, तैकी दर्द ना आया। हे निरंकार कृपा कर, प्रजा ते बादशाह दा की मेल हुंदा है, प्रजा दे गरीब बंदियां दा ते बादशाह दा मेल। इस तरह है जिवें एक शेर गौआं दे वग नूं अगे ला लवे, पर उसका रथवाई उदी रखवाली करदा है। तू कृपा कर इस जगत जलंदे नूं सुखी कर। एक अरदास कीती, जां पादशाह बाबर नूं पता लग्या कि एक ऐसा अनोखा फकीर आया है कैदी बन के, जिदी चक्की आपे चल रही है, आप ओ गले विच दाने भी नहीं पा रहा, आपे ही दाने पै रहे हैं ते आपे ही पीछे जा रहे हैं। ता आके जदों दर्शन कीते, दर्शन कर दिया आत्मा शुद्ध हो गई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाबर ने कहा, हे बंदे खुदा दे तू कौन है? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगा, मैं कोई होर नहीं, मैं भी उसका एक मामूली बंदा हां, पर तू बंदियां वाले काम नहीं कर रहा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बाबर नूं, भाई तू भाई खुदा दा बंदा है? आखे जी मैं खुदा दा ही बंदा हां। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, जेड़े खुदा दे बंदे होंदे हन ओ खुदा दे बंदियां ते रहम करदे हन।

तुर्क दुष्ट सब छह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

यूं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा कह बिन सतगुरु को नहीं पहले प्रणहारा।

गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दिया बीबिया दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो। बुलाओ फतेह।

महादेव पिया, मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे, जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसा। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए, ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर, जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए, ते चल पे उना दे नाल तीर्थां दे भ्रमण करदे करदे, ते जा करके द्वारका नगरी तो थोड़ी दूर बाहर

मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया देखिया बई ए मेरे नाल जो चले आ रहे

देखिया मगर नामदेव दिखाई नहीं दिते क्योंकि नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े ते ज्ञानेश्वर जी ते उना दी मंडली ते अगे नूं चाले पा गए मगर नामदेव दी समाधि खुली ते की देखदा है कि उस चौंक दे नेड़े तेड़े एक पठान खलोता है ते उस पठान ने पगड़ी पाई हुई है ते उस पठान दे कोड़ी ने वछेरा दिता है कदी वछेरे वल देखदा है नामदेव ते कदी उस दी पगड़ी वल देखदा है ते पठान नू देखदे देखदे मानो पठान दे रूप विच्चों नारायण नू देखदा होया।

कुछ पछतावा कीता कि हे निरंकार मैं संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कीता नहीं। मैं मोह माया दी नींदर विच सुता रहा, मेरा सौ जागे हौन इस भर सोवा। इस संसार दे पंज झगड़िया विच पै के मैं सारा जीवन अपना एवें व्यर्थ गवा लिया। सेजे रमत नैन नहीं पेखो। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू तो मेरे हिरदे रूपी सेज ते जाग रहे, पर मैं मोह माया दी नींदर विच सुता ही रहा, कदे तैनू वेखण दा जतन ना कीता, कदे तेरे चरणां विच जुड़ के ओ महान रस ना मान सकिया, जिस नाल मेरा लोक परलोक सौरदा सी। इसलिए मेरी मत बहुरी, मेरी मत बहुरी।

वीर कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार ना कछ मिलियो ले लंगोटी तो सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जागन जे रसना नाम उचारने असंखा हजूर कहंदे ने असंखा ही मोह माया दी नींदर विच सुते होए हन अपने तंदियां विच सारा जीवन रोल दिता है पर कदी सुते होए मन नू जगाउण दा जतन नहीं कीता कि तू की करन आया है वाहिगुरु ने तैनू किस मार्ग ते तुरन लई कहा सी ते तू किस मार्ग ते तुर पिया है प्रिया प्रेम सहज मन अनद धरोरी प्रभ मिलबे की लालसा तांते आलस कहां करोरी जिन्हां नू प्रभु दे मिलन दी लालसा होवे ओ फिर कदे आलस करदे हन ओ अमृत वेला सौंके बिता देंदे हन नहीं ओ कदे नहीं अमृत वेला सौंके बिताउंदे ओ फिर जाग के मालक दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन रस माणदे हन ते जिन्हां ने भाई ए मनुच्छा जन्म मोह माया दी नींदर विच सौंके ही बिता दिता है पहला बचपन सी खेडां विच बीत गया जवानी घर दे सामान इकट्ठे करन विच बीत गई ते बुढ़ेपे विच भी तां ओही कुछ चेते रह जाएगा ना जो जवानी विच हिरदे रूपी पट्टी ते लिख लिया सेठ बनारसी दास जो सहारनपुर दे रहन वाला सी बड़ा धन इकत्र कीता बड़ी माया कठी कीती शौकारे दा कम करदा सी महल माड़ियां दुकाना माया दी कोई कमी नहीं पर अपने जीवन विच कदे एक दंबड़ी भी भले पासे नहीं लाई एक कौड़ी भी कदे चंगे पासे नहीं दिती की पिया है कितनी मुश्किल कमाई दी है ते ए हुन मंगत्यां नू लोड़वंदां नू देण वास्ते कमाई है की मिल जाएगा इन्हां नू दे के सारा जीवन बिना सिमरन दे बिना सेवा दे बतीत कर दिता अंत समा आ गया हुन अंत वेले परमेश्वर किथे याद रहिंदा बच्चे सिराने बैठे हन पर मन अजे भी कार विहार विच डुबिया होया फलाना किथे है ओ किथे है अखे जी सारे बैठे हन ते दुकान ते कौन बैठा उचारण करो श्री वाहिगुरु मर्दी वेरी भी तंदियां विच रुझिया इसे तरह शरीर छड गया हुन पुत्रां ने सोचिया भाई पिता जी ने अपने जीवन विच तो कोई चंगा कर्म नहीं कीता ते कितना चंगा होवे जे इस दा शरीर हरिद्वार ले जाके गंगा दे किनारे संस्कार कर दईए इस दी गति हो जावे क्योंकि जिन्हां ने नाम नहीं जपया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे ने, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे ने, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया है, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे, जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगा। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी वी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

मंगी जाए केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार कभी ते पुकार सुनेगा ना बस मंगता मंगी जाए मंग बार बार दोहराई जाए किवें मंगे बबीहे दी तरह उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा मंगी जांदा है ना दिन विंदा ना रात विंदा वो पुकारा करी जांदा है बबीहा बोल रहा सी किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना कहना एक बूंद चाहिए एक बूंद ली बोल रही मंगती का पहला गुण है जी कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है नदियां नाले ने सागर हन तालाब हन वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले कहने नहीं ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते मैनू तो एक बूंद चाहिए एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं ख्याल करियो जी एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले कहना जा जाके सो आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे क्यों नींद हराम कर रहे बबीहा नहीं मुड़िया जी बबीहा बोलता जा रहे आखिर की होया वो एक लिव ने आल बोल रहा सी एक कोलो मंग रहा सी बाणी विच फैसला है जी

ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे त आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

आनंद माणते हैं, गुरु के शब्द रूपी चरणा हिरदे विच वसाउंदे हैं। ये मौज उन्हां नूं पता है भाई, जे तुम्हें उस मौज नूं मानना चाहना है, उसका आनंद वेखना चाहना है, तो फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पवेगा गुरु के चरणा विच। कह बे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुठा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़िया होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदे कादे लई, कि मैनू चरना दी प्रीति बख्शिश होवे, चरना दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तो फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई, भाई चरणा दी प्राप्ति हो गई, फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उना करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे, पर उसका भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है वो किसे होर दा नहीं हुंदा। कहण लगे चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, ता फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहण लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, ता चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लेना, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, ता फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाई। ते महापुरख कहन लगे चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग ले हो। इसलिए जिन्हां नू स्वाद आ गया है, चरणा दा रस आ गया है, प्यारी साध संगत इस रस नू ओही जान दे। इसलिए इच्छा नहीं चरना दे प्यार वालियां नू, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। जो चरना दी प्रीति विच आनंद है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं मैनू स्वर्ग नहीं चाहिदा, स्वर्ग तां पुन्ना करके मिलता है, जदों पुन समाप्त हो जान तां जीव फिर उत्थे ही पहुंच जांदा है जिथों तुरिया सी, पुन खत्म हो गए ते फिर गिराए मन कीता जांदा है। कबीर जी कहंदे ने मैं नरकां विच भी नहीं जावांगा, क्योंकि जिन्हां नूं पूरन गुरु दी प्राप्ति हो गई है, पूरन गुरु कदे अपने सेवक नूं नरकां विच नहीं जान देंदा, वो बचाउंदा है, भावें अपनी कमाई देनी पवे, अपने सेवक नूं कदे नरकां विच नहीं जान देवेगा। ते कबीर जी कहंदे ने कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहो, संतन के पर सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज को रहो अंत अर आद। चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कहंदे हन इस मौज नू ओही जानदे हन जेड़े गुरु दे चरणा विच जुड़दे हन भाई। इसलिए इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, इन्हां नूं जिन्हां नूं शब्द रूपी चरणा दा स्वाद आ गया।

जे इतने इतने साल बिता चुके हैं, देखी कदी असी अपने शरीर बारे सोचे कि कदी किसी ने अपनी जबान बारे सोचे। अगर परमात्मा ने सानू जबान ना दिती होंगी तो साडा जीवन कहो जिहा होंदा। धन दौलत सुख दे समान कितने भी हों, रंग रूप सब कुछ होवे, पर जे जबान नहीं।

जिस परमात्मा ने तेनु बोलन दी जाच दिती ऐ रसना, फिर उस परमात्मा दा सिमरन तू क्यों नहीं कर दी। ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना के बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवा ओ भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ऐ रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी रस है, निंदा चुगली करनी भी रस है, ए ते

के अपनी जबान नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु

बच्चे दा पहला गुरु उसकी मां होंदी। जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे दा जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मावां ही बच्चिया दा जीवन बिगाड़दियां हन, झूठ बोलन दी आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउण दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मन लिया। आरिया समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां, ते बाल भी कुआड़ा सिर तों तां चुकिया, लगे हन इन्हां नूं।

तू मेरी हुण पालना कर। पर वाल्मीक तू पाप कर पावे पुण कर, पाप दी कमाई लिया घर विच पावे नेकी दी कमाई लिया, पर अंत वेले

साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं हिंद दी चादर क्यों आखिया गया? इसलिए उन्हां नूं हिंद दी चादर आखिया जांदा है। तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दिती जिस वक्त के इस हिंदुस्तान नूं बचाण वाला कोई भी नहीं सी। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उन्हां मजलूमां दी बांह फड़ी ते हिंद दी चादर कवाया। अला यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर करके लिखिया है।